0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।

0: हिंदुस्तान का देगा तू?
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंदू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना।

हाले करते हम करे किससे हम बयां, उम्मत के सहारे आजा जब तुझको पुकारे आजा। हाले करते हम करे किससे।

देखो वो क्या बन के आए हैं, कुरान से पूछो। बचाएंगे वो नारे दोज़ख से सबको, अजब मौजज़ा है कि जन्नत

परमाने है हो सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। मुसलमान तेरा हबर है मोहम्मद, इधर है खुदा और उधर है मोहम्मद, मिला है तुझे मुस्तफा का वसीला, शहीदीन खैरुल वरा का वसीला, तुझे हक ने ताजे

एक भलाई भी तेरी, खुदा की कसम ये खुदाई भी तेरी। यहाँ तक कि कुरान तेरे लिए है, मोहम्मद का फरमान तेरे लिए है, मोहम्मद।

वक्त रूठा है, मुसीबत की घड़ी है आका, दिल लरसता है, कजा सर पे खड़ी है आका। आरज़ूओं की जमीन

गुल्फ की गुल्फ घटाओं से बड़ी है आका, आप चाहेंगे तो बरसात भी हो जाएगी, आप चाहेंगे।

जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंड नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

थोड़ी मीठी से थोड़ी सी खट्टी, मस्त वाली हमारी ये जोड़ी, हम दोनों यू मिले। हिलक फील गुड गाना, हिलक धमक का गाना, हिर भाई उजाला रेडियो, और फिल्म का नाम है 14 फेरे, 2021।

ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

मेरा है तू, मेरा मिला यू जैसे बिछड़ा ना तू. ब्यूटिफुल गाना द स्टेम फन यशिता शर्मा सामने में अभी हियर सो बाय उजाला रेडियो. हॉर यू नेचुरली द बेस्ट एंड द मोस्ट मोइस्ट नंबर्स दी यू मार कैन बिडेंकर. Ja, we variëren met rustige Ghana, Dhamaka Ghana. Ik zie ik mooi Ghana. Tussendoor ook een beetje Love Ghana. Alles wat er maar is en alles wat mooi is om naar te luisteren. Ja, dat heb ik speciaal voor jullie geselecteerd.

ऐसा थे गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम जैतोस कॉर्मलिंक वेख नंबर 1 से सिमित वेग सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर्स को ऑर्डिनाटोरन और सभी फ्रेवेलखर्स बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तक यार औत वेग सेंट्रम कॉर्मलिंग के बहेर्दर श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग स्टैनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कॉम्बी का रहने वाला था। अम्स्टर्डम जैतोस कॉर्मलिंग वेख नंबर 1 से सिमित वेग सेंट्रम कॉर्मलिंग के बहेर्दर्स कोऑर्डिनाटोरन और सभी फ्रेविलखर्स बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तखियार और वेग सेंट्रम कॉर्मलिंग का बहेर्दर श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में स्टैनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 1 बजे किए जाएंगे। मोरखन जात दख एन उर वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरसोरखिंग इन सभी के दुख में शामिल है।

0: कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की सरसमे पर किस्मत को है आसमान, ये प्रेम का जहां है हर किस्म भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 4 तारीख सितंबर का प्रोग्राम, फ्राइडे 4 सितंबर। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। मैं हूँ सुभाष शिव गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम, चाहे यहाँ पर आप लोग हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करने वाला हूँ। वीकेंड है, अभी से आप सभी सुनने वाले को शुभ वीकेंड, फैन वीकेंड टू खबर हमारी तरफ से। और चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं सुंदर सा भजन और जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य पर आप लोग सुनेंगे ये शानदार सा भजन।
1: Today's playlist is dedicated to Lord of the Universe Shri Krishna, the divine avatar of Lord Vishnu and the symbol of love, wisdom and devotion. These timeless bhajans and devotional songs bring the divine presence.

जय राधा रमन। और इस तरह से ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 4 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, अमसराम शहर से प्रोग्राम को बना रहे आप सभी सुनने वालों के लिए खुद मोर खालमाओ।

हो जाता है प्यार न जाने को ही। कुमार सानू एंड सपना मुखर्जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुनने वालों, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वल ये इश्क पहला शुरू हुआ। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और मेरे शहर में यहाँ पर इस वक्त माइक बुद्धू जी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम

दिल की धड़कन यही कहते हैं कि तू है दिल के दास्तां। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जय फैंस पोल्डर में, जहां पर इस वक्त एमईजी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

0: सोचता हूँ कि आज भी तुझसे प्यार है, लेकिन तेरी खामोशी याद आ जाती है। और इस तरह से खूबसूरत से कवाली प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो। करीबन 5 मिनट बाकी रहा 10 बजे में। हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का दफ्तर भी आज 10 बजे सुबह से खोले जाएंगे शाम में 3 बजे तक। जहाँ का फोन करना हमारे 9 3 9 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना हो, तो आप सही कर एकदम तार कर सके हैं।
1: तेरे ना
0: आई बॉय

हमारे प्यारे सुने वालों, ना दे ब्रेक ना दे रिक्लाम, अब एनक वित रुख यार, कहीं पे ना जाइए, यहीं पे रहिए हमारे साथ यार।

कल हमें इतना बता दे, चाहे जो जी तोलक बनाइए, चाहे जो जी तोलक पकाइए, मोई से पकाइए, मोई से खाइए, बेंच ऑन तो बेंच कॉफी या तो चाय के साथ बैठ करके ऑन बैठ करते होंगे, मोई से खाइए यार, हमें भी सोच लिए।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आज शुक्रवार 4 तारीख सितंबर का प्रोग्राम। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आपके साथ हम देने वाले हैं दिन में 12 बजे तक। हम आप लोग से बता चुके कि आप लोग मुझे अपना कर सके हैं। और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे बहुत ही प्यार के साथ, या वेल

चांद से पर्दा कीजिए ओ मेरे हम नवा। अविश्वर से कुमार शानू जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और देखा जाए हम सुनम सर तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, और आज जबकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो ये शानदार सा भजन जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

कृष्ण कन्हैया की अवसर से अनूप जलोता की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य पर ये भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आप सभी को बधाइयां शुभकामना।

0: वेल कितना मोर कितना विशाल, हर जन्म में तेरा इश्क मेरा साथ रहे, और जब बोले हवा बदल जाए तो तेरा प्यार मेरा साथ रहे। वेल एंड यू आर उजाला रेडियो, उजाला रेडियो डी बेस्ट वन।
1: एक पल में बदल गई जिंदगी।
0: और चलिए अब की बार अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

पल तेरे खामोश होठों से मोहब्बत गुनगुनाती है, अवसर से अनुराधा पौलवल एंड पंकज उदास जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम द बेस्ट वन। ओम सलाम शहर से आई एम द बेस्ट।

गोरे गोरे गालों पे तोरे गोदनवा बोले जुलुम करे ना। आई सरस गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने जबल युवाड़ू जला रेडियो है। आई बो इस मौसम में ये सब गाना कितना मोई लगे सुना।

वेल कौन अलबेली जरा पानी भरे वेल यू आर उजाला रेडियो। अच्छा भाई ना वीकेंड यार, वीकेंड में का होई का कर रखोई, जो भी लोग आप लोग करेंगे प्यार से कर लेना, दुलार से करिए, नहीं तो ना करिए यार, वीकेंड हुआ है।

कहां जा रहे हो सवेरे सवेरे मुझे भी साथ ले लो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुने वालों, करीबन 5 मिनट बाकी रहा 11 बजे में। 5 मिनट फॉर अल्लाह।

तेरे द्वार पर भैल भीर भय भारी यार अरे अत्यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे वीकेंड है यार, एंड वीकेंड रेडियो उजाला रेडियो है अमंग स्पांग यारा।

और इगनवा ब्रेक के उस पार ना एल्फियर हम तो के पूरा सुना देबे ना दे रिक्लाम आई बोई तो लोग पकाई भाई ले सेबेरे सेबेरे फ्रुकु फ्रुकु

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। मैं हूं सुभाष शिव गोविंद खुद मोर खालमाओ। करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुकल है 11:05 ऑफर 11 फ्राइडे 4 सितंबर वीकेंड। दैट इज बैना वीकेंड यार, और वीकेंड तो हमें चाहिए आप लोग जो ची करिए, प्यार से करिए, दुलार से करिए, और ना करिए नहीं ना करिए, हम तो उनसे बता ही चुके वादा के मुताबिक। हम बोले रही ना द ब्रेक ना द रखला हम ये गर्मा तो

और इस तरह से एक खूबसूरत सा गजल जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो है डीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं।

लाल बलियार सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था और आज भी रहेगा कल भी रहेगा। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो मेरे शहर में राना गाना मांग करे से और खास करके अपन लिफ फ्राउ के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ।

चेहरा क्या देखते हो, बोले दिल में उतर कर देखो ना। आई बॉय कितना विशाल कितना मोई गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। हम सुनम अक्कर में देखा जाए हैं गोपी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं खुद मूर्ख। आओ चलिए गाना तुम्हारे नाम। और गाना को मांग कर इसे अपन लिफ फ्रौआ के लिए प्यार के साथ।

कितना मोह ये मुझे मुझे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, नाद नाद ब्रेक फन ट्वाल फिर मृत्यु समाचार के बाद चाय एंड कॉफी जाओ सुन लेना। मृत्यु समाचार के बाद करीबन 12:30 बजे हाल ऑफ फेम चाय कॉफी लॉयट एंड आनंद।

या बोई पल पल दिल के पांस बोले मैं जब सांस लेता हूं बस यार तेरी खुशबू आती है कितना विशाल कितना मोई अल्फाज बोले मैं सांस लेता हूं तो बोले तोर महक आवे है वेल कितना मोई है वासत मवार कभी कभी सपना में हो जाए यार।

वेल यार उनसे मिली नजर यार की मेरी मेरा मेरा मेरा होश उड़ गयल। हाय बॉय ऐसे होवे तो जब नजर मिली तमार होश गल काम से। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन 15 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ।

और जो हम मांग लो ऊना हो तो रहे रहे के नतुल्लक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, 12 बजे की बात है मृत्यु समाचार, और उसकी बात आप लोग सुनेंगे चाय एंड कॉफी आनंद एंड लोहित के साथ।

21 Mera Damon. Oh, sir, si kana joap lug suni rana matai ke vans mein. एंड रोटरडम में सुग्रीम भजन भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम बल लाखों आई बॉय।

0: और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुने वालों, ठीक देखा जाए करीबन 4 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, और इसका ये मतलब हुआ कि धीरे धीरे आप लोग से हम इजाजत चाहेंगे। आशा है कि आज का प्रोग्राम जिस तरह से हमने बनाए और सजाए आप लोग को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड शुक्रिया। और अब ना भूलिए चाय या तो कॉफी के साथ आनंद एंड लॉयज के जरिए सुन लेना हलफेन और फिर हलफेन
1: मेरे दिल की घड़ी।
0: आई बॉय, ये दिलवा का करे है यार,
1: रात की बारा
0: ये दिलवा बड़ा मुश्किल करे है। अफराल ये मौसम है, पानी के मौसम है, दिल की घड़ी करे टिक टिक
1: जब बजे रात की बारा, हाय तेरी याद ने मारा।
0: और तो लोग मोई से रहिए, अपना वीकेंड तो लोग मोई से बिताइयो। हम हरदम बोले लो जो करिए प्यार से करिए, नहीं तो ना कर।

अच्छा यार, तो लोग मोई से रहिए, अपना वीकेंड तो लोग मोई से बिताइए, जो भी बनाइयो, जो भी खाइयो मोई से खाइए और मोई से रहिए। तो लोग हम आप लोग से फिर मिलेंगे यहीं पर जहां पर हम छोड़ के जा रहे हैं, यहीं पर मिलेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष सिंह गोविंद, बाय बाय, स्वाय स्वाय।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कपेला ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त की सास अनिल और मरलिशा दीदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमे और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरिनाम न्यू वेर्ख फोंदनवेख मेस्टर बोईती के निवासी थी। कपेला ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त के सास अनिल और मरलिशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमे और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉक सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय भुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया किए जाएंगे आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम ट्वी यूर देला क्रीमटोरियम मातलिंक वेख 101 103 रोटरडम जुइट में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश जीलैंड के रहने वाले परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, पिया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छोटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज और सभी लड़कन के बड़की माई, काकी, मामी, नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। खुश जेलान से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर, इन लोगों की भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज लड़कन के बड़की माई, काकी, मामी, नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है रोटरडम में। इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शनिचर, आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जातरखानस्तांद फन एन तो ट्वेर रो सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेग 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 51 55 02 71 06 51 55 02 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार बहादुर और परिवार सुखदेव और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 78 साल के आयु में अख्तन सैफ अंतखियार और बीबी साहबा जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना। अम्स्टर्डम जोयतोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। स्टेनली हीरा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कोम्बी वेह का या तो कोम्बी का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल के आयु में अख्तन सैफ अंतखियार और बीबी साहबा जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना। अम्स्टर्डम जोयतोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा के मृत्यु हो गई है। स्टेनली हीरा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कोम्बे का रहने वाला था। अर्थी के दाहक्रिया कल शनिचर के दिन में 1 बजे मोरखन जात्रदाख एन उर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्थ फुरसोरखें परिवार हीरा और बाकी परिवारों के दुख में शाम

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

अब नजेबी भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनने वालों, और उजाला रेडियो के जरिए हम यही चला रहे हैं आप लोग की फरमाइश, और फरमाइश हम पेश करने वाले हैं सांदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा की आज 74वीं फिर से याद रखे। ये सालगिरह के खुशी के मौके पर आपको ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपको हर एक बीमार से, हर एक मुसीबत से दूर रखे। साहब ऑस्कर भगाए फन हर तुम्हें तो फिर से आपको के ना जाने हैगा। आपका नाम है ऑस्कर भगाए एंड इधर इन कैंटी नतील के वाला है साहब ऑस्कर भगाए फन हर तुम्हें तो फिर से फरियादा सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह मुबारक हो। सांदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए की आज फिर से फरियादा है सालगिरह के खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी बीबी साहबा, बीबी साहबा हबीबन मीना रजब प्यारा प्यारा खावीन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ पेश करें।

0: आज है, आज है शुक्रवार 4 तारीख सितंबर है, आज 4 तारीख सितंबर को असम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा की आज 74वीं फिर संयुक्त सफे आ रहा है और इस सालगिरह की खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी बीवी साहबा हबीबन मीना रजब प्यारा प्यारा हैंडसम सा खाविन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ फरमाइश के सांदाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए के 74वीं फिनो से तो सफियार हाज है सालगर के खुशी के मौके पर आसन दिलफ के रहने वाला बेटा फैजल भगाए प्यारे प्यारे पापा के लिए बहू बीबी साहबा सुसान भगाए प्यारा प्यारा ससुर के लिए शनाया सुनैना ईशान और शाया भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी दुलार के साथ अर्ज करें सुनिया
1: ईश्वर रब खुदा भगवान के कई रूप हैं लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें सब समाया है वो है पिता। पिता क्या है ये शब्दों में बयां कर नहीं सकता, शायद पिता से बढ़कर इस जहां में कोई हो ही नहीं सकता।

Zaandam के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा के आज 74वीं 74वां verjaardag है और इस साल के खुशी के मौके पर आसंदेलव के रहने वाला बेटा फैजल भगाए प्यार प्यारा पापा के लिए बहू सुजान भगाए ससुर के शनाया सुनैना ईशान और साया भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी दुलार के साथ फरमाइश किए साहब के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा के आज 74वीं 74वां verjaardag है साल के खुशी के मौके पर दयारख साहब ऑस्कर भगाए अपनी प्यारी प्यारी खलीफ़दे ब्यूटी क्वीन बीबी साहबा हबीबन मीना रजब के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें

Sandam gerhani valan sahab Oscar bhagan ki chahtar bhi 74 se fiyada gaan chi aur isal grike khushi ki maak bring de yaar gezelf ha de yaar gezelf sahab Oscar bhagai apni pyari pyari khalifde habiban mina rajab ke liye badi pyar mohabbat dil aur jaan ke saath ढेर सारा प्यार के साथ फरमाइश की साहब ऑस्कर भगा के 74वीं 74 सफे आज हैं सालग्र के खुशी के मौके पर और रोटरडम से बेटी शर्ली पापा के लिए विजय रूपचांद ससुर के लिए शिवानी और किशन रूपचांद नाना के लिए नाना जान के लिए बड़ी प्यार और मुबारकबाद के साथ अर्ज करें प्रोग्राम में सुनिए आप

शानदार रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए की आज 4 तारीख सितंबर को 74वीं 74 से आ रहे खुशी के मौके पर नहमा फरमाइश के बीबी साहबा हबीबन मीना रजब प्यार प्यारा खाविन के लिए हैंडसम सा खाविन के लिए बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ ऑस्कर भगाए की 74वीं 74 से आ रहा है सालगर के खुशी के मौके पर परमानेंट के रहने वाले बेटा निशा भगाए पापा के लिए बहू राबिया भगाए ससुर के लिए रोमानो रनिशा राइश रोहन और रयान भगाए दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और मुबारकबादी दुलार के साथ अर्ज करें

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

साहब ऑस्कर भगाए, थोड़ी देर के लिए हम आपकी फरमाइशें को रोक देते हैं, ना द कमर्शियल ब्रेक, ना द कमर्शियल ब्रेक, बाकी की फरमाइशें उजाला रेडियो के जरिए हम पेश करने वाले हैं, जरूर सुन लेना। आज आपकी सालगिरह है, 74 से व्यादा है। ये सालगिरह की खुशी के मौके पर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें और हर एक बीमारी से दूर रखें। आप ये सालगिरह धूमधाम के साथ मनाइए, पूरा रिश्तेदार के साथ, जान पहचान के साथ। आज शुक्रवार 4 तारीख सितंबर को जो है सालगिरह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बेशक प्रोग्राम को सुन रहे ना द कमर्शियल ब्रेक उजाला रेडियो के जरिए, बाकी की फरमाइशें लाई जाएगा उजाला रेडियो के जरिए। चलिए प्रोग्राम में हम एक नहमा सुनाने को जा रहे हैं सुनने वालों, और ना दिन में डॉन कमर्शियल आएगा और कमर्शियल के बाद हम फिर से हाजिर होंगे लेकर फरमाइश साहब ऑस्कर भगाए के लिए।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozan Radio.
1: Ek haath mein desh ka jhanda, ek haath mein Surinam ka jhanda, doojhe mein talwar.
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआं पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
4: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

हैं बिनकोर ट्रावर तो विवाह होने वाले हैं तो शादी होने वाले हैं सुनने वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोर ट्रावर तो विवाह होने वाले हैं तो शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in totaal 465 kilometer file in Nederland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En op de A35 van Almelo naar Enschede doe je er ook een half uur langer over tussen Hengelo-Zuid en Enschede. A50 Apeldoorn en Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ये है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम फरमाइश जाहिर कर रहे हैं सांदम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगाए के लिए जिनके आज 74वीं 74वें फेयरडे साल के खुशी मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज किया जा रहा है अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे खुश रखे तंदुरुस्त रखे हर एक बीमारी से दूर रखे

0: है तुमसे।
1: उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में नहमा जो आप सुनने जा रहे हैं, फरमाइश इस तरह से है सुनने वालों, आज जबकि शुक्रवार 4 तारीख सितंबर है तो सामदाम के रहने वाला ऑस्कर भगा के आज 74वीं फिर सफी आ रहे सालगिरह के खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी बीबी साहबा हबीबन मीना रजब अपने प्यारा प्यारा हैंडसम सा खाविंद ऑस्कर भगा के लिए 74वीं 74 सालगिरह की खुशी के मौके पर फरियादा के खुशी के मौके पर प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें।

0: Zaandam, ik herinner wel aan ze heb Oscar, Bhagaike, Aatje, Chahatrawi, 74e verjaardag is al een keer goed gemaakt per. Zaandam ze, Beta Sandi, Bhagai, Papa Klee, Bahu Anushka, Bhagai, Sasur Klee, Bari Pjaar, Mahavatar, Mubarak, Badke Zaatar Skeer. En de jarige, ze heb Oscar, Bhagai, Abnu Pjaar, Pjaari, Bibi Sahaba Klee.
1: Happy birthday.
0: Geliefde Habiben, Mina, Rajab Kili, Salgrike, Khushik Maakke, Verbri, Pjaar, Aar Mahabba, Dil, Aar Janke, Saar. Aaj, Khush Hoke, Sahab, Oscar, Bhagai, Apnehi, Salgrike, Chahadarvi, Salgrike, Khushik Maakke, Verbri, प्यार प्यारी बीबी साहबा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ आपके लिए पेश किया जा रहा है बीबी साहबा हबीबन मीना रजब बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ पेश है

0: Zandam के रहने वाला साहब ऑस्कार भगा की आज 4 तारीख सितंबर को 74वीं 74 व्यारह है और इस साल ग्रह के खुशी गवाओं के पेड़ बीबी साहब हबीबन मीना रजब अपने प्यारा प्यारा खाविन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ हैंडसम सा खाविन के लिए है नहवा को मांग के इस बार सांदम से सीला आलमा लिलियन और बीन प्यारा प्यारा भैया साहब ऑस्कार भगा के 74वीं सालगिरह के खुशी के मौके पर बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज करें हैं
1: आप क्या सोच रहे भैया
2: सोच रहा हूँ विशाल जब मैं यहाँ आया था तो कितना छोटा आदमी था आज तुमने कितना बड़ा बना दिया बहुत बड़ा भैया

चांदम की रहने वाला साहब ऑस्कर भगाएं की आज 74वीं सालगिरह है, सालगिरह की खुशी के मौके पर आपकी प्यारी प्यारी बीबी साहबा हबीबन मीना रजब प्यारा प्यारा हैंडसम सा खाविन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ अर्ज किए प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश आपके वास्ते हम पेश करने को जा रहे हैं साहब ऑस्कर भगाई 74 jaar vandaag geworden. Vandaag vrijdag 4 september. Gaur is Khushik Malkeper. Aapke Pyar Pyari Bibi. Bibi Sahaba Habiban Minna Rajab Pyar Pyari Pyar Pyari Khawin Kli. Lurken Faisal Shirley Nishal Reza Aur Sandeep Bhagai Papa Kli. Susan Vijay Rupchand Rabia Claudia Aur Anushka Sasur Kli. Sabhi Lurken Kitraf Se Nana Aur Dada Kli. Badi Pyar Mahabbat Aur Mubarak Badi. के साथ अर्ज करें बहुत ही प्यार और दुलार

नाम के रहने वाला साहब ऑस्कर भगा के 74वीं सालगिरह छे 74वीं सालगिरह छे सालगिरह के खुशी के मौके पे प्यारी प्यारी बीबी साहब हबीबन मिन्ना रज प्यारा प्यारा खाविन के लिए लड़कन फैसल शर्ली निशा रेजा और संदीप भगाए पापा के लिए सुजान विजय राबिया क्लाउडिया और अनुष्का ससुर के लिए सभी लड़कन की तरफ से नाना और दादा के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश की साहब ऑस्कर भगाए जितने से फरमाइश था अब खत्म होने पर आए हैं उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक वेंस यून हेल फैन मिदा फरियारी मोई से मनाइए सालगिरह मोई से मनाइए अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे खुश रखे तंदुरुस्त रखे और हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से आपको दूर रखे

उजाला रेडियो है ये, सुनने वालों आज का प्रोग्राम में कुछ कृष्ण भजन आप सुन रहे हैं और यह है विशेष करके आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर आप हर एक को बधाइयां देते हुए उजाला रेडियो की तरफ से।

0: Kiss Geheimde Zaar. Oejala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur Yip Hi. Meervaart Theater mein. Aryaab ke Shahar mein. Shekhar Kumar. Maus Mew Roy ke saad. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje de Kiraat het toch? Raadke. Saad bezig. Inloop. Our program raad ko 12 baje khatm hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ek haath mein desh ka jhanda, ek haath mein Surinam ka jhanda, doojhe mein talwar. कोम का होगा तभी उठा।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में एक बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में एक बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
0: वीरेन यूली बस्तात 40 jaar, niet 10.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कपेल ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त की सास अनिल और मरलेशा दीदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमे और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरिनाम न्यू वेर्ख फुंदनवेख मेस्टर बोईती के निवासी थी। कपेल ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त के सास अनिल और मरलेशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमे और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉक सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय भुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया किए जाएंगे आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा खोम त्वी उर देला क्रीमटोरियम मातलिंक वेख 101 103 रोटरडम जुइट में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश जीलैंड के रहने वाले परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल के आयु में त्वियन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, पिया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छोटकी रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज और सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंद लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। खुश जीलैंड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वियन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर, इन लोगों की भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छोटकी रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंद लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है रोटरडम में। इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शनिचर, आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जातरखानस्तांद फन एन तो त्वे उर रौ सेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 51 55 02 71 06 51 55 02 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार बहादुर और परिवार सुखदेव और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कपेल ऑन द एसल से बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉय का बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉय का बहादुर की माँ रोटरडम एसलमोंडे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंडनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कपेल ऑन द एसल से बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयक बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयक बहादुर की माँ रोटरडम एसलमोंडे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉ सेंट्रम खुदजे के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंक वेख 101 रोटरडम जोइट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: दिस इज डेनिस मोय फ्रॉम द एएनवीबी। देयर आर एट दिस मोमेंट गेन फाइल मेल्डिंग एंड टॉट सोवेर द एएनवीबी वेकेशन इंफॉर्मेशन।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, और इसी लीला पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बड़ा नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। और यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे, दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया।

उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, आज का प्रोग्राम में कुछ कृष्ण भजन आप सुन रहे हैं और यह है विशेष करके आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर आप हर एक को बधाइयां देते हुए उजाला रेडियो की तरफ से।

प्रिय सुनने वालों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर उजाला रेडियो की तरफ से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई पेश है।

और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सुनने वालों कुछ भजन, कुछ कृष्ण भजन आप के लिए पेश है। और उजाला रेडियो की तरफ से सभी सुनने वालों को ये दिन बहुत बहुत बधाई हो।

0: में देश का झंडा, एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार, कोम का होगा तभी उधार।
1: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
0: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
2: Oejala, laat je aan wel eens nietje. Zaterdag 19 september ko. Oejala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzay, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Ga me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadkist ermee, AWC. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood.

और जी में आता है कि जी भर के तुम्हें प्यार करूं, फिल्म ठोकड़ का गीत। और आप सुने मोहम्मद रफी साहब से, इसी फिल्म ठोकड़ से निकाला हुआ एक और गीत आप सुनेंगे मुकेश जी से, और ये उजाला रेडियो है।

प्रोग्राम में सुनेंगे कुमार सानू जी के जरिए अलका याग्निक भी साथ देंगे कि तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

वो चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले, जिया जले, रात भर धुआं चले। लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से, और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।